0: या गीता सवें आईचिये कार्यक्रम संपयता मोकल्या कोंगनीनाथ कार्यक्रमान मेळता. परत एक पटी देव बरे करूं. येदळवरेक कोंगणी पदा कोंगनीनाथ कार्यक्रम आयकून आसल्यात. आयकून रावात रेडिओ निनाद 90.4 FM. हे जनमनाचे नाद तरंग.
1: நிக்கலுக்கே நந்துள்ளரு ரேடியோ நினாதா 90.4 FM.